0: वंदे मातरम।
1: वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम।

हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं 101.9 मेगाहर्ट्ज एफएम बैंड पर और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 12वीं तिथि, तदनुसार 3 जुलाई 2026 प्रातः के 5:58 हुए हैं। आज की प्रसारण सभा अब आरंभ होती है।

0: हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं 101.9 मेगाहर्ट्ज एफएम बैंड पर और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर। प्रातः के 6 बजने को है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से समाचार हिंदी में।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की है। इनमें पाकिस्तान से संचालित सीमा पार आतंकवाद भी शामिल है। नई दिल्ली में कल भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद संयुक्त वक्तव्य में दोनों नेताओं ने पिछले वर्ष 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की। उन्होंने पिछले वर्ष 10 नवंबर को दिल्ली में हुई आतंकी घटना की भी निंदा की। दोनों देशों ने इस निंदनीय कृत्य के अपराधियों, आयोजकों और वित्त पोषकों को बिना किसी देरी के सजा दिलाने का आह्वान किया। श्री मोदी और सुश्री तकाइची ने अलकायदा, इस्लामिक स्टेट, लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद सहित संयुक्त राष्ट्र में सूचीबद्ध सभी आतंकी समूहों तथा संस्थाओं के खिलाफ समन्वित कार्रवाई का आह्वान किया। दोनों प्रधानमंत्रियों ने सुगम और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के साझा लक्ष्य के लिए समान विचारधारा वाले देशों के बीच सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई। भारत और जापान ने भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी के रूप में आर्थिक सुरक्षा के महत्व का उल्लेख किया है। आर्थिक सुरक्षा सहयोग पर भारत जापान संयुक्त घोषणा पत्र में कहा गया है कि आर्थिक सुरक्षा साझेदारी आपसी विश्वास, साझा मूल्यों और आपसी हितों पर आधारित है। इसके अनुसार दोनों देशों की समृद्धि, सुरक्षा और आर्थिक भविष्य आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। दोनों देश 5 प्रमुख क्षेत्रों, सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा तथा औषधि में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन के विधायी और संसदीय कार्य से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इसका उद्देश्य नवनिर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्यों के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। इनमें समिति प्रणाली, वित्तीय निगरानी, संसदीय विशेषाधिकार और विधानसभाओं में डिजिटल प्रयोग जैसे मुद्दे शामिल हैं। पंचायती राज मंत्रालय आज नई दिल्ली में विभिन्न राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करेगा। इसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार विमर्श किया जाएगा। कार्यशाला की अध्यक्षता केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह करेंगे। कार्यशाला में केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल भी उपस्थित रहेंगे। इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सर्वोत्तम प्रथाएं साझा की जाएंगी और कार्यान्वयन संबंधी चुनौतियों पर चर्चा होगी। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज जम्मू कश्मीर में पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो रही है। लाखों श्रद्धालु 57 दिन की यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन करेंगे। ये यात्रा 28 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन संपन्न होगी। श्रद्धालुओं का पहला जत्था कल कड़ी सुरक्षा के बीच अनंतनाग जिले के नुनवान और गांदरबल जिले के बालतल आधार शिविर पहुंचा। बिहार के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा कल ईरान के सर्वोच्च नेता आयातुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में

शामिल होंगे। इस पर विदेश मंत्रालय ने कहा है कि समारोह में इन दोनों भारतीय प्रतिनिधियों की उच्च स्तरीय उपस्थिति दोनों देशों के बीच सभ्यता से जुड़े संबंधों के महत्व का परिचायक है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस के ड्रोन और मिसाइल हमलों में 27 लोगों के मारे जाने और 90 लोगों के घायल होने की खबर है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि बुधवार रात को हुई ये बमबारी यूक्रेन की ओर से रूस में नागरिक ठिकानों पर किए गए लंबी दूरी के हमलों के जवाब में थी। उधर सीरिया में कल राजधानी दमिश्क के एक कैफे में हुए विस्फोट में कम से कम 9 लोगों की मौत हो गई। सीरिया के गृह मंत्रालय ने बताया कि ये कैफे राजधानी के हिजाज जिले में पैलेस ऑफ जस्टिस से 100 मीटर की दूरी पर है। सुरक्षा बलों ने हमले की जांच के लिए इलाके की घेराबंदी की है। और स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है। कल रात स्पेन ने ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई। प्री क्वार्टर फाइनल में स्पेन का सामना पुर्तगाल और क्रोएशिया के बीच जारी मैच के विजेता से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं 101.9 मेगाहर्ट्ज़ एफएम बैंड पर। प्रातः के 6:05 हुए हैं। आइए सुनते हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम।

लीजिए सुनिए आज का चिंतन। महर्षि वेदव्यास ने कहा है, सत ही धर्म तप और योग है, सत ही सनातन ब्रह्म है, सत्य को ही परम यज्ञ कहा गया है तथा सब कुछ सत्य पर ही टिका है। ये था आज का चिंतन और अब सुनिए भक्ति संगीत।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए आपको आज प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों की जानकारी देते चलें। अब से कुछ ही पलों बाद यानी 6:35 पर श्री रामचरितमानस पाठ सुनिएगा। आज सुनिए भाग 238। सुबह 6:45 पर संगीत सरिता में शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, इस श्रृंखला का तीसरा भाग सुनिएगा। कलाकार हैं बांसुरी वादक पंडित रोनू मजूबदार। प्रस्तुति अनुश्री पाठक की है। 7:00 गूंजेगी सदा भूले बिसरे गीत की। 7:30 पर सुनिए हम है राही प्यार के। 8:00 समाचार सुनिएगा और 8:15 पर वंदे मातरम एक जय घोष, इस श्रृंखला की 35वीं कड़ी सुनिएगा। लेखक है मिलिंद सबनीस और प्रस्तुतकर्ता है अनुश्री पाठक। 8:30 पर चित्रलोक सुनिएगा। 8:00 राजकुमार पर केंद्रित होगा कार्यक्रम आज के फनकार, जिसे आप सुनेंगे आज सुबह 9:30 पर और आज रात 9:30 पर। 10:00 पिटारा के अंतर्गत सुनिए हेलो फरमाइश। 11:00 रंग तरंग कार्यक्रम होगा और 12:05 पर यादों की महफिल सजेगी। इसके पहले 12:00 सुनिए हिंदी में समाचार। दिन में 1:00 सुनिए सुरीला सफर। 2:00 वंदे मातरम एक जय घोष 35वीं कड़ी का पुनः प्रसारण सुनिएगा। 2:00 समाचार का वक्त है 2:15 से और 2:30 से सुनिए सदाबहार नगमे। 3:00 हेलो सहेली कार्यक्रम होगा और 4:00 पिटारा में गीतों भरी कहानी। कहानी सुनिए सुनहरी पूछ वाला अमर पंछी। लेखक है मनीष वैद्य, वाचक स्वर ममता सिंह का है। प्रस्तुत करता है राघवेंद्र सिंह नेगी। 5:30 पर तराने नए पुराने कार्यक्रम होगा। 6:00 आप सुनेंगे हिंदी में समा

6:35 पर संध्या रंजन कार्यक्रम होगा और 6:45 पर संगीत सरिता में शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका श्रृंखला की तीसरी कड़ी सुनिएगा। 7:00 जयमाला कार्यक्रम पेश किया जाएगा और 7:45 पर अनमोल यादें गुलदस्ता सुनिएगा इंद्रधनुष के अंतर्गत। 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत सुनिए अनमोल यादें फिल्म पत्रकार राजीव से जयंत पात्रिकर की बातचीत। 8:00 हवा महल में सुनिए प्रहसन पड़ोसी का कैमरा, लेखक हैं हिमांशु श्रीवास्तव और निर्देशक हैं भगवान साहू। 8:15 पर चित्रलोक कार्यक्रम का प्रसारण होगा। 8:45 पर समाचार संध्या और 9:00 सुनिए कार्यक्रम आपके लिए। 10:00 सुनिए छाया गीत और 10:30 पर ढलती जाए रात। ये था झरोका, आज प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों का।

सिंहासन पर श्री राम की पादुका की स्थापना करके भरत नंदीग्राम में पर्णकुटी बनवा वहां इस प्रकार अनासक्त भाव से निवास करने लगे हैं जिस प्रकार चंपा के उद्यान में भ्रमर अनासक्त रहता है। उनका शरीर दिनों दिन दुबला होता जा रहा है किंतु मुखमंडल की कांति पूर्ववत बनी हुई है। शरद ऋतु में जल घटता है किंतु बेंत विकसित होते हैं और कमल खिल जाते हैं। शम तम संयम और उपवास रूपी नक्षत्रों से भरत जी के हृदय का आकाश आलोकित है। उनकी निष्ठा और विश्वास ध्रुव तारे की भांति अटल हैं। 14 वर्ष की अवधि पूर्णिमा के समान है। श्री राम की स्मृति आकाश गंगा जैसी निर्दोष और प्रकाशमान है। भरत नित्य प्रति श्री राम की पादुका का पूजन करके उन्हीं से आज्ञा मांगकर राजकाज करते हैं। उनका परम पवित्र आचरण व्रत और संयम देखकर साधु संत भी सकुचा जाते हैं। अयोध्या कांड के समापन प्रसंग में गोस्वामी तुलसीदास ने इन शब्दों में अपने उद्गार व्यक्त किए हैं। श्री राम के प्रेम रूपी अमृत से परिपूर्ण भरत का जन्म यदि न होता तो मुनियों के लिए भी दुष्प्राप्य यज्ञ नियम शम दम आदि कठिन व्रतों का आचरण कौन करता।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस पाठ। हम आपको याद दिला दें, आज शाम 7:45 पर सुनिए कार्यक्रम अनमोल यादें। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर से जयंत पात्रकर की बातचीत, प्रस्तुति जुबैर खान की है।
1: ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती।

0: श्रोताओं नमस्कार। संगीत सरिता कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका। आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध बांसुरी वादक पंडित रोनू मजुमदार। आपसे बातचीत कर रही हैं ममता सिंह। तो आइए सुनते हैं इस श्रृंखला की तीसरी कड़ी।
1: श्रोताओं नमस्कार। आज हम संगीत सरिता की इस तीसरी कड़ी में फिर उपस्थित हैं और पद्मश्री पंडित रोनू मजुमदार जी, नमस्कार। रोनू दा, थोड़ा अपने बारे में बताइए, कैसे शुरुआत की बांसुरी की, और अपने गुरु जी के बारे में बताइए, तालीम के बारे में।
2: हाँ, गुरु बिन ज्ञान कहाँ से पावे, गुरु इति ज्ञान। तो ये एक बड़ी अजीब सी शुरुआत है। मैं बचपन में वैसे तो बहुत शांत था, माता जी बोलती थी कि सबसे शांत भाइयों में यही था, मगर एक गलती मुझसे ऐसी हो गई
1: जी,
2: वहीं से मैं बांसुरी बजाने लगा। वाराणसी में मेरा जन्म हुआ
1: जी जी,
2: 1963 में। तो जब मैं 6 साल का था तो हम लोग सारनाथ करके एक जगह है, वहां पे भगवान बुद्ध का जन्म भी हुआ है
1: जी,
2: और बड़ी आध्यात्मिक जगह है। वहां पे पिताजी पन्नालाल घोष जी के शागिर्द थे
1: जी,
2: और पन्ना बाबू की उन्होंने सेवा भी बहुत की, और पिताजी बहुत बड़े पेंटर थे मगर शौकिया बांसुरी बजाते थे, और होम्योपैथिक डॉक्टर भी बहुत बड़े थे।
1: अच्छा
2: जी। तो वो जो बांसुरियां हम लोग अभी बहुत संभाल के रखते थे, उस जमाने में कोई बस खाट पे पड़े हुए थे, तो मैंने 5-6 बांसुरियां, कोई खिलौना तो था नहीं मेरे पास, तो बांसुरियों से खेलते खेलते मैंने 5-6 बांसुरियां तोड़ डाली बस। तो शाम को आके लाल पीले हो गए एकदम वो, मैंने सोचा आज मेरी खैर नहीं, इतनी मार मुझे पड़ेगी आज की, मैं तैयार हो गया सजा पाने के लिए, मगर कोई सजा उन्होंने नहीं दी। उन्होंने कहा कि ठीक है, जितनी बांसुरियां तुमने तोड़ी है उतने ही घंटे रोज

0: रियाज करना पड़ेगा, यही तुम्हारी सजा है।
1: गजब।
0: और मैं था बड़ा ईमानदार बचपन से, मैं झूठ कभी नहीं बोलता था, अभी भी नहीं बोलता हूँ अगर मजबूरी ना हो तो। तो कहते हैं ना, सच बोलो भाई, सच बोलो, सच के सिवा कुछ मत बोलो, एक झूठ के लिए यहाँ 100 झूठ बोलना पड़ता है।
1: सही बात है।
0: सच बोलो भाई, सच बोलो, सच के सिवा कुछ मत बोलो, बोलो। तो ये लाइनें मैंने लिखी हैं, मैं कविता भी लिखता हूँ। तो वो जो मैं पिताजी से सीखने लगा और 6-6 घंटे रियाज करने लगा, तो मैं बांसुरी वादक ही बन गया। उसके बाद 1973 में हम लोग बंबई आ गए। बंबई आने का कारण कुछ बनारस छोड़ना था ऐसा नहीं, होम्योपैथी का इतना डिमांड बनारस में था नहीं। तो यहाँ डॉक्टर मुखर्जी थे
1: जी,
0: वो पिताजी के दोस्त थे, तो उन्होंने बंबई बुलवा लिया। बंबई आने के बाद हम लोग ऐसे आदमी से मिले जो कोई सोच नहीं सकता कि मैं उनको मिला हूँ। मेरे उम्र के शायद ही कोई होंगे जो उनसे मिले होंगे, क्योंकि उनकी मृत्यु को भी कई, मतलब 30-35 साल हो गए
1: जी। जी।
0: उस्ताद नसीर अहमद खान साहब, तान सम्राट। अब वो तान सम्राट कोई पद्मश्री पद्मभूषण नहीं है, तान सम्राट ऐसा कोई टाइटल नहीं है कि इनको भी दे दिया, उनको भी दे दिया, इनको भी दे दिया। सारे उस्ताद चौबारे में बैठते थे और उनकी महफिल लगती थी, उसमें एक एक करके सब गाते थे और उसके बाद एक दूसरे को एक एक नाम देते थे। अरे ये तो धीरे-धीरे का बादशाह है, अरे इसके तो खटके का जवाब नहीं, अरे इसके तो साह लगाने का अंदाज अलग है। तो उस्ताद नसीर अहमद खान साहब तान जब गाए तो सारे अमीर खान साहब और ये लोग सब मिल के बोले, अरे ये तो तान का सम्राट है ये।
1: गजब।
0: तो तान सम्राट से मैं मिला। आप सोचिए 74 में 11 साल की मेरी उम्र, और उनकी बंदिश आज तक मुझे याद है
1: जी,
0: जिसको राशिद भाई भी गाते थे
1: जी जी,
0: मगर जो आज भी YouTube में है, कोई सुने तो बोले कि ऐसा नहीं गाया कोई
1: जी।
0: मियां की थोड़ी पार करो तुम अब मोरी नैया, हजरत निजामुद्दीन औलिया।
1: तो यहाँ पर सुनाएंगे क्या थोड़ी?
0: मैं जरूर सुनाऊंगा
1: जी।

क्योंकि मियाँ की थोड़ी है ना, तो जाते वक्त पंचम नहीं लगेगा, गामा धा नहीं जाने धा बामा धा बामा गा रे सा, ऐसा इसका चलन है। एक बदलाव मैंने इसमें किया है, खास आप गाते थे खाली से शुरू करते थे, मैं पार उसको मैं सम से लेता हूँ, पता नहीं क्यों मुझे उसमें सम दिखता है, तो मेरी जो रिकॉर्डिंग मियाँ की थोड़ी की सीडी है उसमें मैंने सम से लिया है।

0: इसको गाना भी इतना मुश्किल है
1: जी।
0: तो गंज शखर के लाड लडैया में उन्होंने जो एक तान ली, तब से मुझे तीन प्रकार के तान वो गाते थे, वो जो मुझे याद है, एक तलवार कट तान, एक जिलेबी तान जिसमें बहुत हसीन थे देखने में
1: जी।
0: उनकी तस्वीर भी पिताजी ने बनाई, क्योंकि पिताजी ने कहा कि इतना सुंदर गायक मैंने तो नहीं देखा
1: जी जी।
0: और मोटे फ्रेम का चश्मा पहनते थे
1: जी।
0: लता जी ने उनका गाना सुनना चाहती थी, तो लता जी ने उस जमाने में 500 रुपए एडवांस दिए थे।
1: गजब।
0: वो एडवांस लेके खान साहब चले गए दिल्ली।
1: अच्छा।
0: प्रोग्राम गाया ही नहीं।
1: अच्छा।
0: और पिताजी से कहा कि वहां पे किसी का डेथ हो गया है।
1: हाँ।
0: आप, मैं जा रहा हूँ, मैं गाऊंगा नहीं।
1: हाँ।
0: आप अपने बच्चों को लेके लक्ष्मण प्रसाद जयपुर वाले के वहां चले जाइए, उनके जैसा गुणी कोई नहीं है आज।
1: जी जी।
0: मैं भी नहीं, मैं तो गा लेता हूँ।
1: हाँ।
0: वो जानते भी है। लक्ष्मण प्रसाद जयपुर वाले जी के वहाँ हम लोग बाबा भगवान दास जी के आश्रम में माटुंगा में, उन बाबा के वहाँ हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कोई जात पात का कोई
1: भेद नहीं,
0: कोई भेद ही नहीं, बस संगीत ही संगीत उनको अच्छा लगता था। लक्ष्मण प्रसाद जी हमारे हिंदुओं में जो वानप्रस्थ आश्रम होता है, पहले बाल आश्रम, ब्रह्मचार्य आश्रम जिसको, उसके बाद गृहस्थ आश्रम,

0: बाद वानप्रस्थ फिर सन्यास
1: जी,
0: ये चार आश्रम बताए गए, मतलब चार जीवन के चार पहलू
1: जी।
0: तो वानप्रस्थ उन्होंने ले लिया था, घर में नहीं रहते थे, वही बाबा के वहां रहते थे।
1: अच्छा,
0: वहां जाके उनके दर्शन किए, मेरी दीदी उनसे गाना सीखने लगी, मैं भी गाना सीखने लगा। मगर जब भी कोई बंदिश हो मुझे बताएं, मैं उस बंदिश को गाता भी था और बांसुरी में और अच्छा मैं उसको निकालता था।
1: गजब।
0: एक दिन वो पिताजी से बोले कि भानु दादा, आप बहुत पढ़े लिखे हैं, आपकी हैंडराइटिंग देख के लगता है कि इसको फ्रेम में करके दीवार में रख के। तो पिताजी को बोले कि आपका बेटा गाता तो ठीक ठाक है, मगर ये बांसुरी वादक बनेगा। तो पिताजी बोले किसके पास ले जाना चाहिए। तो उस जमाने में हरि जी का इतना नाम नहीं हुआ था। 1976 में मैं 13 साल का हो गया। बोले यहीं पे सायन में फिल्म डिवीजन में काम करते हैं पंडित विजय राघव राव, उनसे गुणी बांसुरी वादक कोई नहीं है। गुरु बहुत फेमस होने की जरूरत नहीं है, गुरु ज्ञानी होना चाहिए।
1: बिल्कुल।
0: वहां पे मैं चला गया और बांसुरी की शिक्षा मेरी होने लगी। वो भी पन्नालाल घोष जी को देख के ही बांसुरी शुरू किए थे
1: जी, जी।
0: तो तीव्र मध्यम के लिए एक छोटी उंगली की इस्तेमाल वो भी आवश्यकता वो करते थे। जो हरि जी का टेक्निक है वो तो भोलानाथ जी वाला टेक्निक है, तो उसमें छोटी उंगली की इस्तेमाल नहीं है, वो शहनाई वाली टेक्निक है
1: जी, जी।
0: और ये जो मैं बजाता हूँ ये पन्नालाल घोष वाली टेक्निक है
1: जी।
0: मेरे गुरु जी ने एक दिन रात नहीं जा रहे घर से निकाल दिया मुझे।
1: अच्छा।
0: बोले अभी ये बजेगा तो ही आना। और मैंने 40 दिन का चिल्ला किया, बस 40 दिन एक ही आसन में बैठ के 4 घंटे रोज, जिसको 40 का चिल्ला कहते हैं, वो चिल्ला मारा मैंने, अंगुलियां फूल जाती थी तीव्र मध्यम सानी दा मामदानी मैं बजा के सुना रहा हूं।
1: जी, जी, जी।
0: आपको लगेगा कि ये जो कई लोग प्यार से इसको कहानी उंगली भी कहते हैं, उसका स्पीड आप तर्जनी जो है हमारा और मध्यमा जो है उतना स्पीड आपको उसमें दिखाई पड़ेगा।
1: जी जी,
0: देखिए
1: सुनाए सर।
0: सानी दा पामा मामे कानी उंगली से बजा रहा हूं तो उसका स्पीड देखिए।

0: जो यमन राग, राग श्री, ऐसे राग अगर आप छोटी उंगली कानी उंगली का इस्तेमाल लिटिल फिंगर का नहीं कर रहे तो कैसे बजेगा? मैं तो लिमिटेशन मानता हूँ इसको।
1: जी जी जी,
0: जो इसका इस्तेमाल नहीं करते उनके वादन में कुछ ना कुछ लिमिटेशन है।
1: तो ये जो आपने बजा के दिखाया, अपने श्रोताओं को बता दे कि ये जो बारीकियां पंडित जी यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं हम तो देख रहे हैं आंखों से, लेकिन जो सुनने में आ रहा है वो सचमुच ये बाकायदा कहीं अंकित करने लायक है।
0: मैं गुरु के बारे में एक बात और कहूं।
1: जी,
0: मेरे गुरु जी इतने महान थे मगर वो पहले थे कर्नाटिक म्यूजिशियन।
1: जी,
0: कर्नाटिक फ्लूट बजाते थे और डांसर थे।
1: अरे वाह।
0: हाँ, तो उन्होंने जो नॉर्थ इंडियन म्यूजिक सीखा वो पंडित रविशंकर जी से सीखा।
1: अच्छा।
0: हालांकि रविशंकर जी का उनकी उम्र में सिर्फ 5 साल का ही फर्क था। 2011 में मेरे गुरुजी गुजर गए, 2012 में रविशंकर जी गुजर गए। रविशंकर जी बड़े गुरुजी मैं बोलता हूँ। वो जब मेरे गुरुजी से पूछे कि मैं गाना रिकॉर्ड कर रहा हूँ एशियाड के लिए, इंदिरा गांधी जी के कहने में अथ स्वागतम शुभ स्वागतम, अथ स्वागतम शुभ स्वागतम, इसमें मेरी बांसुरी बजी हुई
1: है। जी जी बिल्कुल।
0: तो मेरे गुरुजी ने कहा कि मेरा एक शागिर्द है, वो मुझे रानेंद्रपुरा नाम से बोलते थे और रानू बोलते थे।
1: जी जी।
0: उसका दिमाग बड़ा तेज है, उसको ले लीजिए आप इसमें। तो मैं उस गाने में जब बजाया तो मैं ना नोटेशन बहुत फास्ट लिखता था बचपन से, एकदम स्टेनो की तरह, स्टेनोग्राफर जैसे होते हैं।
1: जी जी।
0: तो वो बोले कि विजय, मेरे गुरुजी का नाम लेकर बोले, सॉरी मैं ऐसे नाम ले रहा हूँ, ये लड़का मुझे दे दो।
1: अरे गजब।
0: ये लड़का आप मुझे दे दो। तो गुरुजी बोले आपका ही है, बोले इसको दिल्ली भेजो। उदय शंकर जी जो रविशंकर जी के बड़े भाई थे,
1: जी, जी,
0: उनके ऊपर मैं एक फेस्टिवल कर रहा, उदय उत्सव। उदय उत्सव में मैं बजाने चला गया। तब से पंडित रविशंकर जी के जितने एल्बम हुए सब मैंने बजाया। फिर उनसे डायरेक्ट भी मैंने कुछ राग सीखे, जैसे परमेश्वरी, तिलक श्याम और राग रसिया।
1: जी।
0: मतलब यहाँ तक कि नट भैरव में क्या सोचना चाहिए, नट भैरव कई लोगों को मालूम भी नहीं कि ये रविशंकर जी का बनाया हुआ राग है। ये साउथ का एक राग है सरसांगी।
1: जी जी।
0: नट भैरव ही है वो।
1: जी।
0: उसको रूप दे दिया रवि गुरु जी ने कि

0: साग को छोड़ के बजा के दिखा रहा हूँ, देखिए कैसी बात है। ये नट भैरव है।
1: वाह पंडित जी, अब घड़ी की ओर देख रहे हैं कि समय समाप्त हो रहा है, तो आज की इस कड़ी को यहीं समेट रहे हैं। अनुमति लेते हैं श्रोताओं से, नमस्कार।
0: नमस्कार।
2: शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका। श्रोताओं, संगीत सरिता कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे इस श्रृंखला की तीसरी कड़ी। आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध बांसुरी वादक पंडित रोनू मजुमदार। आपसे बातचीत की है ममता सिंह ने। बांसुरी संगत कल्पेश सांचला की और तबला संगति अजीत पाठक की। श्रोताओं, इस श्रृंखला के लिए तकनीकी सहयोगी किरण बंग, संपादन सहयोगी झरना सोलंकी और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

हम आपको एक बार पुनः याद दिला दें, आज शाम 7:45 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम अनमोल यादें। इस कार्यक्रम में सुनिए फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर से चैन पात्रेकर की बातचीत, प्रस्तुति जुबैर खान की है। ये विविध भारती है, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे कार्यक्रम भूले बिसरे गीत।

मूल्य बिस्तर गीत कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं मदर इंडिया फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज में। शकील बदायूनी के बोल हैं और नौशाद का संगीत।

मदर इंडिया फिल्म का ये गीत आपने अभी सुना। आज जाने माने अभिनेता राजकुमार की पुण्यतिथि है। अपने खास अंदाज के लिए मशहूर राजकुमार जी की तमाम फिल्में हैं जिन्हें हम बड़े ही चाव से देखते हैं। आइए अब सुनते हैं ये गाना फिल्म नौशेरवान आदिल से।

1957 में रिलीज हुई फिल्म नौशेरवानिया दिल, जिसमें सोहराब मोदी के साथ अभिनेता राजकुमार और माला सिन्हा नजर आए। बहुत मशहूर फिल्म। और आइए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म पंचायत का ये गाना।

0: फिल्म पंचायत का ये गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। शकील नोमानी का कलाम था और इकबाल कुरैशी का संगीत था।
1: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं,

0: त्रस्त नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के कंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है। पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविद भारती पर। आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
2: देखो जी बहार आई, गांवों में खिली पहलियां।
1: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
3: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
1: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास, भूले बिसरे गीत।
2: तुम्हारी याद सताती है
1: हर रोज सुबह 7 सिर्फ विविध भारती पर।
4: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर कार्यक्रम भूले बिसरे गीत जारी रहेगा एक छोटे से अंतराल के बाद।

हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं 101.9 मेगाहर्ट्ज एफएम बैंड पर। प्रातः के 7:15 हुए हैं। आइए आपको बता दें आज के शेष कार्यक्रमों के बारे में। अब से कुछ ही देर बाद 7:20 से और शाम 7:20 से आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। कार्यक्रम अमृत कलश आप सुनेंगे प्रातः 7:23 से। प्रातः 8:15 से आप सुनेंगे कार्यक्रम सुर संगम और कार्यक्रम गीतांजलि आप सुन सकेंगे दोपहर 2 बजे से। प्रातः 8:23 से कार्यक्रम प्रणाम अयोध्या में आज की बात होगी अल्पसंख्यक समुदाय वाली मलिन बस्तियों में सुधार। साथ ही डॉक्टर आनंद उपाध्याय वरिष्ठ आयुर्वेदिक चिकित्सक अयोध्या जानकारी देंगे बरसात के मौसम में पाचन से जुड़ी समस्या और उसका आयुर्वेदिक समाधान। प्रातः 9 बजे से आप सुनेंगे कार्यक्रम आपके संदेश आपके गीत। प्रातः 9:30 से और रात्रि 9:30 से आप सुनेंगे सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो अयोध्या। दोपहर 12:30 से आप सुनेंगे कार्यक्रम लोक रंग। शाम 5:30 से कार्यक्रम लोक संगीत और कार्यक्रम गूंजी स्वर गांव के आप सुनेंगे शाम 6:30 से। कार्यक्रम कुछ तुमने कहा आप सुनेंगे दोपहर 1 बजे से। दोपहर 2:30 से कार्यक्रम अंगना में चर्चा होगी बेटियों को सिखाएं आत्मरक्षा के तरीके और मुद्रा योजना विषय पर। साथ ही इसी कार्यक्रम में आप सुनेंगे उषा किरण शुक्ल की कहानी काल कोठरी से मुक्ति। प्रायोजित कार्यक्रम NCERT आप सुनेंगे दोपहर 3 बजे से। शाम 5 बजे से कार्यक्रम युवाणी में चर्चा होगी अल्पसंख्यक समुदाय का तकनीकी शिक्षा के माध्यम से कौशल उन्नयन। साथ ही स्थान के अंतर्गत आपको सैर पर ले जाएंगे कैनबरा ऑस्ट्रेलिया। साथ ही इसी कार्यक्रम में आप जानेंगे नए नए शब्दावली। शाम 6:45 से कार्यक्रम कृषि जगत में चर्चा होगी धान की सीधी बुआई यानी DSR विधि। साथ ही अरुण कुमार वर्मा और राम प्रकाश पांडे की बातचीत प्रसारित की जाएगी किसान उत्पादक संगठन कुछ महत्वपूर्ण बातें। साथ ही इसी कार्यक्रम में आप लेंगे लोकगीतों का आनंद और जानेंगे बाजार भाव और मौसम का हाल। रात्रि 8:15 से आप सुनेंगे कार्यक्रम गीत गुंजन और कार्यक्रम महफिले गजल आप सुनेंगे रात्रि 9:15 से। तो ये थी आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 7:18 होने को है। कुछ ही देर बाद 7:20 से आप सुनेंगे आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार।

0: प्रदूषण एक गंभीर समस्या है जिसे ज्यादा टाला नहीं जा सकता है। प्रदूषण को मिटाना है, पर्यावरण को स्वच्छ बनाना है।
1: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम,
2: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग के कार्यों की समीक्षा की। राज्य के आश्रय गृहों सह प्रशिक्षण केंद्रों और हाफ वे होम में रहने वाले संवासियों के भरण पोषण की अनुदान राशि बढ़ाने का लिया निर्णय। श्रीराम मंदिर चढ़ावा मामले की जांच के लिए SIT दोबारा पहुंची अयोध्या। बार एसोसिएशन ने ट्रस्ट के पदाधिकारियों के खिलाफ दी तहरीर। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने प्रयागराज में VVG रामजी अधिनियम के शुभारंभ कार्यक्रम को किया संबोधित। कहा, ग्रामीण भारत में श्रम को सम्मान और गांवों के विकास को रफ्तार देने का माध्यम बनेगी यह योजना। और मानसून ने लोगों को भीषण गर्मी से दी राहत। मौसम विभाग ने 3 दिनों तक जताई बारिश की संभावना। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ स्थित अपने सरकारी आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक में दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने आश्रय गृहों सह प्रशिक्षण केंद्रों और हाफ वे होम में रहने वाले संवासियों के भरण पोषण के लिए अनुदान राशि 2,000 रुपए से बढ़ाकर 3,000 रुपए प्रतिमाह करने का निर्णय लिया है। एक रिपोर्ट।
3: दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि आश्रय गृहों में रहने वाले मानसिक मंदित और निराश्रित दिव्यांगजन पूरी तरह संस्थागत देखभाल पर निर्भर होते हैं। उन्हें पौष्टिक भोजन, समुचित स्वास्थ्य देखभाल और सम्मानजनक जीवन उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार दिव्यांगजन के सम्मान, सुरक्षा और गरिमापूर्ण जीवन से जुड़े प्रत्येक प्रयास को प्राथमिकता दे रही है। बैठक में मुख्यमंत्री ने हर जनपद में नियमित रूप से सहायक उपकरण वितरण शिविर आयोजित करने और दिव्यांग बच्चों की शिक्षा पर विशेष ध्यान देने के भी निर्देश दिए। समाचार कक्ष से रितेश।
2: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित होने वाले 3 दिवसीय उत्तर प्रदेश आम महोत्सव 2026 का शुभारंभ करेंगे। प्रदेश के उद्यान और कृषि विपणन राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने बताया कि कल जनभवन लखनऊ में आम क्रेता विक्रेता सम्मेलन का भी आयोजन किया जाएगा। श्रीराम मंदिर चढ़ावा मामले की जांच के सिलसिले में कल एक बार फिर SIT की टीम अयोध्या पहुंची। जांच को आगे बढ़ाते हुए टीम विभिन्न बिंदुओं पर पड़ताल कर रही है। मामले की जांच अवधि 15 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। इस बीच अयोध्या विकास प्राधिकरण ने श्रीराम मंदिर चढ़ावा मामले में आरोपी लवकुश मिश्रा से जुड़ी एक निर्माणाधीन संपत्ति पर नोटिस जारी किया है। ADA के सचिव ने बताया कि भवन निर्माण नियमों के संदिग्ध उल्लंघन के कारण नोटिस जारी किया गया है। एक रिपोर्ट।

0: एनडीए की ओर से नोटिस जिस निर्माणाधीन संपत्ति को दिया गया है वह लवकुश मिश्रा की पत्नी सुप्रिया मिश्रा के नाम दर्ज है। नोटिस में एक सप्ताह के भीतर जवाब देने और यह बताने को कहा गया है कि भवन का नक्शा प्राधिकरण से स्वीकृत है या नहीं। उधर अयोध्या अधिवक्ता संघ ने चौकी सिविल लाइन में ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, ट्रस्टी अनिल मिश्रा, गोपाल राव समेत अन्य के खिलाफ तहरीर दी है। तन्मय सोनी, आकाशवाणी समाचार, अयोध्या।
1: केंद्र सरकार की कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफओ योजना 2026 29 जून से प्रभावी हो गई है। नई योजना ने 1952 की कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम का स्थान लिया है।
2: इस योजना का उद्देश्य डिजिटल अनुपालन को मजबूत करना, प्रशासनिक दक्षता में सुधार करना, खातों के स्थानांतरण को आसान बनाना और भविष्य निधि ढांचे को नए श्रम कानून के अनुरूप बनाना है। नई योजना में अनिवार्य ईपीएफ अंशदान कर्मचारी और नियोक्ता दोनों की तरफ से वेतन का 12% बना रहेगा। केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित प्रतिष्ठानों पर मौजूदा 10% की दर लागू रहेगी। योजना में आंशिक निकासी के नियमों को भी अद्यतन किया गया है। योजना में पारदर्शिता में सुधार और भविष्य निधि प्रबंधन को अधिक कुशल बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग, ऑनलाइन दावों, ई पासबुक और यूनिवर्सल खाता संख्या से जोड़ने पर भी जोर दिया गया है। समाचार कक्ष से प्रेमचंद्र गुप्ता।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। केंद्रीय ग्रामीण विकास, कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल तिरुपति में विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 का शुभारंभ किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि यह अधिनियम देश में रोजगार सुनिश्चित करने, ग्रामीण आजीविका को मजबूत करने और गांवों के विकास में तेजी लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
3: मनरेगा में केवल 100 दिन रोजगार मिलता था, विकसित भारत जी राम जी योजना में पूरे 125 दिन मजदूर को रोजगार मिलेगा। और रोजगार देने की बात प्रधानमंत्री ऐसे नहीं कह रहे, पहले साल ही विकसित भारत जी राम जी योजना में केंद्र ने जो अपना पैसा दिया है वो है 95,600 करोड़ रुपया और राज्यों का 40% शेयर मिलेगा, तो एक साल में ही खर्च होंगे 1,51,282 करोड़ रुपया।
1: उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने प्रयागराज में अधिनियम के शुभारंभ अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि यह योजना ग्रामीण भारत में श्रम को सम्मान, गरीबों को संबल और गांवों के सतत विकास को नई रफ्तार देने का मजबूत माध्यम बनेगी।

0: विकसित उत्तर प्रदेश बताए, लेकिन विकसित उत्तर प्रदेश के साथ साथ हम आप सबको आश्वस्त करना चाहते हैं कि ये जो विकसित भारत की वापसी के रूप में आपके गांव के विकास के लिए भारत सरकार बहुत अच्छा योजना, अब आपका विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश और विकसित झारखंड।
1: उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से आयोजित हो रही शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपीटीईटी 2026 कल पहले दिन शांतिपूर्वक संपन्न हो गई। परीक्षा के दूसरे दिन आज प्रथम पाली में उच्च प्राथमिक स्तर के अभ्यर्थियों की परीक्षा होगी, जबकि दूसरी पाली और कल की प्रथम पाली में प्राथमिक स्तर के अभ्यर्थियों की परीक्षा होगी। मौसम विभाग ने आज से लेकर अगले तीन दिनों के दौरान प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी संभाग में बारिश की संभावना जताई है। इस बीच राज्य में मानसून के आने के बाद लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है, हालांकि कई जिलों में लोगों को अभी भी उमस का सामना करना पड़ रहा है।
2: दक्षिण पश्चिम मानसून मंगलवार से ही आधिकारिक तौर पर प्रदेश में दाखिल हो चुका है और ट्रफ लाइन आजमगढ़, बरेली और अयोध्या जिलों से होकर गुजर रही है। मौसम विभाग ने कई जिलों में भारी बारिश का पूर्वानुमान लगाया है।
3: दक्षिण पश्चिम मानसून ने आगे बढ़ने के साथ ही संपूर्ण उत्तर प्रदेश को आच्छादित कर लिया है। दो तीन दिनों के दौरान प्रदेश के दक्षिणी भाग में हल्की से मध्यम वर्षा के साथ साथ कहीं कहीं भारी वर्षा होने की संभावना।
2: ये बारिश किसानों के लिए बड़ी राहत लेकर आई है, जो धान की बुआई में देरी के कारण बेसब्री से मानसून का इंतजार कर रहे थे। सुशील चंद्र तिवारी।

0: आकाशवाणी समाचार लखनऊ।
1: महिला और बाल विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए नामांकन आमंत्रित किए हैं। नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 5 से 18 वर्ष तक के बच्चों की असाधारण उपलब्धियों के लिए प्रदान किए जाते हैं। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग के कार्यों की समीक्षा की। राज्य के आश्रय गृहों सह प्रशिक्षण केंद्रों और हाफवे होम में रहने वाले संवासियों के भरण पोषण की अनुदान राशि बढ़ाने का लिया निर्णय। श्रीराम मंदिर चढ़ावा मामले की जांच के लिए एसआईटी दोबारा पहुंची अयोध्या। बार एसोसिएशन ने ट्रस्ट के पदाधिकारियों के खिलाफ दी तहरीर। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने प्रयागराज में वीबीजी रामजी अधिनियम के शुभारंभ कार्यक्रम को किया संबोधित। कहा, ग्रामीण भारत में श्रम को सम्मान और गांवों के विकास को रफ्तार देने का माध्यम बनेगी यह योजना। और मानसून ने लोगों को भीषण गर्मी से दी राहत। मौसम विभाग ने 3 दिनों तक जताई बारिश की संभावना। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

0: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम। असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम।
1: बढ़ते हुए यह धीमेह से है सब परेशान, शुद्ध वायु दुर्लभ, खतरे में है मनुष्य की जान। कूड़ा और प्लास्टिक जो लोग जलाएं, प्रदूषण के कारण बन जाएं, श्वास लेने में तकलीफ आए, आरोग्य को हानि पहुंचाएं।

हम आकाशवाणी की अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं 101.9 मेगाहर्ट्ज़ एफएम बैंड पर और न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम अमृत कलश। कार्यक्रम अमृत कलश में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। जिनके स्मरण मात्र से ही विघ्न स्वयं मार्ग छोड़ देते हैं, जिनकी कृपा से बुद्धि, विवेक और सफलता जीवन का श्रृंगार बन जाती है, ऐसे मंगल मूर्ति विघ्नहर्ता गणनायक श्री गणपति के श्री चरणों में अपनी श्रद्धा अर्पित करते हुए इस भक्ति रचना का कार्यक्रम शुभारंभ करते हैं इस प्यारे से भजन के साथ।

0: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्व विख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
1: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फेरिए मारा सीमेंट से 9.5% तक आम सरिया के मुकाबले बेहतरीन पकड़।
3: आरएचएल गोल्ड टीएमटी सरिया।

0: 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
1: सुना थे सखी, सुना थे कार्यक्रम मंगनामा होए वाला है का खास।
2: अरे हाँ हाँ सखी, बिल्कुल सुना थे। अब फरमाइशी लोकगीत लोक सुरमाला सुना जाए हर बुधवार।
1: हाँ, जहाँ ज्यादा से ज्यादा सखी जुड़ सकते हैं अपन संस्कृति और परंपरा के साथ, कई सकते हैं फरमाइश हर बुधवार आकाशवाणी अयोध्या के फेसबुक पेज के अंगना पोस्ट पर
2: और व्हाट्सएप नंबर 830-3991-11 पे जाके ANGA टाइप करें और अपन मनपसंद लोकगीत के फरमाइश करें।
3: लोक सुरमाला, आपकी पसंद।
4: क्या आप चाहते हैं कि आपके उत्पाद, सेवाएं या संदेश पहुंचे अयोध्या के हर घर तक? तो जुड़िए आकाशवाणी अयोध्या से, जहां हर शब्द पहुंचता है जन जन तक। आकाशवाणी अयोध्या आपके व्यवसाय, संस्थान और सेवाओं के प्रचार प्रसार का सबसे विश्वसनीय माध्यम। इतना ही नहीं, अपनी शादी की सालगिरह, जन्मदिन की बधाई आप प्रसारित कर सकते हैं आकाशवाणी अयोध्या से। अपना विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें आकाशवाणी अयोध्या, धारा रोड, बेगमगंज, गढ़ैया, अयोध्या, सोमवार से शुक्रवार सुबह 9:30 से शाम 6 के बीच। आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी का पता है ayodhyaakashvani@gmail.com ayodhyaakashvani@gmail.com।
5: मन की बात है जन जन की बात, सभी की कुछ अपनी सी कहानी, कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीद है नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात, प्रधानमंत्री के साथ। मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं, नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। मन की बात।
6: आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम अमृत कलश। जी हां श्रोताओं, जिसकी कृपा से असंभव भी संभव हो जाए, जिसकी शरण में आकर हर भय मिट जाए, ऐसे जगत जननी आदि शक्ति को शत शत नमन करते हुए आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला भजन।

0: अवध क्षेत्र का सबसे विश्वसनीय आंखों का अस्पताल, आपका अपना श्रीराम नेत्रालय, अब नियावा रोड, रिकाबगंज, फैजाबाद में भी उपलब्ध। 60,000 से भी अधिक सफल मोतियाबिंद ऑपरेशन का अनुभव वरिष्ठ नेत्र सर्जन डॉक्टर पूजा थापर एवं डॉक्टर संजीव थापर द्वारा संचालित यहां उपलब्ध है अत्याधुनिक रेटिना एवं ग्लूकोमा क्लिनिक की सुविधाएं। साथ ही ये अयोध्या का पहला एसिलोर एक्सपर्ट ऑप्टिकल सेंटर है, जहां चश्मे की जांच की जाती है विश्व स्तरीय ऑटो फोरॉप्टर एवं आई रूलर मशीन द्वारा। बच्चों के लिए खास मायोपिया कंट्रोल क्लिनिक की सुविधा भी उपलब्ध है। तो आंखों की हर समस्या के लिए श्रीराम नेत्रालय, पता नियावा रोड, रिकाबगंज, फैजाबाद। कॉल करें 91-16-76-46-46।
1: आज से तुम भी स्कूल जाओगे, नई किताबें, नए दोस्त और नई नई चीजें सीखने को मिलेंगी।
2: मम्मी, मैं भी पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनूंगा।
3: गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की ओर बढ़ाइए एक महत्वपूर्ण कदम, अपने बच्चे का प्रवेश आज ही निकटतम सरकारी विद्यालय में कराइए।
4: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
5: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना खेड़िए माना, आम सरिये के मुकाबले लगभग 20% ज्यादा ताकत।
6: RHL गोल्ड DMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा। जानो फिर मानो।
7: आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम अमृत कलश। राधा केवल एक नाम नहीं, प्रेम की सर्वोच्च अनुभूति है। माधव केवल एक स्वरूप नहीं, करुणा, आनंद और अनंत कृपा के साकार प्रतीक है। जब राधा का समर्पण और माधव की मुरली एक साथ गूंजती है, तब संपूर्ण सृष्टि भक्ति के अमृत में सराबोर उठती है और हर दिल से सिर्फ यही आवाज आती है।

कहा जाता है जब ईश्वर की कृपा बरसती है तब भाग्य की रेखाएं भी बदल जाती हैं। जहां मानवीय सामर्थ्य समाप्त हो जाती है वहीं से परमात्मा की अनंत अनुकंपा और चमत्कार दिखना आरंभ हो जाता है।

प्रभु की असीम कृपा और मंगलमय आशीर्वाद सदैव हमारे सभी श्रोताओं पर बनी रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कार्यक्रम अमृत कलश अब संपन्न होता है।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम अमृत कलश। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं 101.9 मेगाहर्ट्ज़ एफएम बैंड पर और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर। प्रातः के 8 बजने को है, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से समाचार प्रभात। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस के प्रतिद्वंद्वी गुटों से पार्टी संगठन के चुनावों और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के संबंध में परस्पर विरोधी दावों पर जवाब मांगा। जम्मू कश्मीर में पहलगाम और बालतल दोनों रास्तों से वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा शुरू। ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामनेई सुरक्षा कारणों से अपने पिता अली खामनेई के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होंगे। पुर्तगाल और स्पेन ने फीफा विश्व कप के अंतिम 16 में जगह बनाई और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका के खिलाफ भारत के दो मैचों की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला का कार्यक्रम घोषित किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की है। इनमें पाकिस्तान से संचालित सीमा पार आतंकवाद भी शामिल है। नई दिल्ली में कल भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद संयुक्त वक्तव्य में दोनों नेताओं ने पिछले वर्ष 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में हुए पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची ने पिछले वर्ष 10 नवंबर को दिल्ली में हुई आतंकी घटना की भी कड़ी निंदा की। दोनों देशों ने इस निंदनीय कृत्य के अपराधियों, आयोजकों और वित्त पोषकों को बिना किसी देरी के सजा दिलाने का आह्वान किया। श्री मोदी और सुश्री तकाइची ने अलकायदा, जैश ए मोहम्मद सहित संयुक्त राष्ट्र में सूचीबद्ध सभी आतंकी समूहों तथा संस्थाओं के खिलाफ समन्वित कार्रवाई का आह्वान किया। दोनों प्रधानमंत्रियों ने सुगम और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए समान विचारधारा वाले देशों के बीच सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता को दोहराया। दोनों नेताओं ने क्वाड ढांचे के अंतर्गत व्यावहारिक सहयोग बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता भी व्यक्त की। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय सुगमता मजबूत करने के लिए आसियान सदस्य देशों के साथ सहयोग के महत्व का भी उल्लेख किया। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारत और जापान ने भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी के रूप में आर्थिक सुरक्षा के महत्व का उल्लेख किया है। आर्थिक सुरक्षा सहयोग पर भारत जापान संयुक्त घोषणा पत्र में कहा गया है कि आर्थिक सुरक्षा साझेदारी आपसी विश्वास, साझा मूल्यों और आपसी हितों पर आधारित है। दोनों देश 5 प्रमुख क्षेत्रों, सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा तथा औषधि में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करेंगे। निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस के प्रतिद्वंद्वी गुटों से पार्टी संगठन के चुनावों और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के संबंध में उनके परस्पर विरोधी दावों पर जवाब मांगा है। आयोग ने कहा है कि उसने संबंध में दोनों गुटों के दावों और प्रतिदावों पर ममता बनर्जी और पार्टी नेता रुणब्रत बनर्जी को अलग अलग पत्र लिखे हैं। आयोग ने यह भी कहा कि दोनों पक्षों को सोमवार शाम 5:30 बजे तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। ये घटनाक्रम तृणमूल कांग्रेस के अंदर पार्टी के संगठन की संरचना और पार्टी की ओर से कार्य करने के अधिकार को लेकर चल रहे विवाद के बीच आया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नव निर्वाचित सदस्यों के

ये दो दिन के संसदीय और विधायी कार्य से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इसका उद्देश्य नव निर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्य के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। इनमें समिति प्रणाली, वित्तीय निगरानी, संसदीय विशेषाधिकार और विधानसभाओं में उभरती डिजिटल पहल शामिल है। कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में राज्यसभा के उप सभापति हरिवंश, केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे। पंचायती राज मंत्रालय आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा, जिसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर चर्चा की जाएगी। कार्यशाला की अध्यक्षता केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह करेंगे और केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। कार्यशाला के दौरान वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा जारी 16वें वित्त आयोग के ग्रामीण स्थानीय निकाय अनुदानों को लागू करने के दिशा निर्देशों पर चर्चा होगी। विचार विमर्श से केंद्र राज्य सहयोग को सुदृढ़ करने और 2047 तक विकसित भारत बनाने की परिकल्पना के अनुरूप पंचायतों को लिए बेहतर शासन, बुनियादी सुविधाओं, सार्वजनिक सेवाओं और समावेशी ग्रामीण विकास प्रदान करने के लिए सशक्त बनाने का मजबूत ढांचा विकसित करने में सहायता मिलने की उम्मीद है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो गई है। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिनों की तीर्थ यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा मंदिर का दर्शन करेंगे। ये यात्रा 28 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन समाप्त होगी।
4: बोले और हर हर महादेव के जयकारों के बीच अमरनाथ यात्रियों का पहला जत्था आज सुबह पवित्र गुफा की तरफ रवाना हो गया। अगले 57 दिनों की इस यात्रा के दौरान लाखों श्रद्धालु नुनवन, पहलगाम और बालतल रास्तों से होते हुए बाबा बर्फानी के यहां अपनी हाजिरी देंगे। दोनों रास्तों पर अधिकारियों ने मेडिकल कैंप, आराम करने की जगहें, लंगर, पीने के पानी की सुविधा और मौसम की पल पल की जानकारी रखने जैसे व्यापक इंतजाम किए हैं। यात्रा को सुरक्षित रूप से पूरा करने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। इस बीच यात्रियों का दूसरा जत्था आज सुबह जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से निकलकर घाटी की तरफ रवाना हो गया है। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं श्रीनगर से इशफाक शाह।
3: ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामनेई अपने पिता और पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई के अंतिम संस्कार में सुरक्षा कारणों से शामिल नहीं होंगे। भारत में ईरान के प्रतिनिधि आयतुल्ला हकीम इलाही ने बताया कि धमकियों और निगरानी जोखिमों के कारण मुज्तबा खामनेई का सार्वजनिक रूप से सामने आना सुरक्षित नहीं है। ईरान में पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई के अंतिम संस्कार का कार्यक्रम 4 से 9 जुलाई तक ईरान और इराक में होगा। बिहार के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा कल ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। इस पर विदेश मंत्रालय ने कहा कि समारोह में इन दोनों भारतीय प्रतिनिधियों की उच्च स्तरीय उपस्थिति दोनों देशों के बीच सभ्यता से जुड़े संबंधों के महत्व का परिचायक है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस के ड्रोन और मिसाइल हमलों में 27 लोग मारे गए और 90 लोग घायल हो गए हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि बुधवार रात को हुई ये बमबारी यूक्रेन की ओर से रूस में नागरिक ठिकानों पर किए गए लंबी दूरी के हमलों के जवाब में थी। रूस पर किए जा रहे लगातार हमलों को यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने 40 दिनों का ताबड़तोड़ हमला बताया है। सीरिया में कल राजधानी दमिश्क के एक कैफे

0: में हुए विस्फोट में कम से कम 9 लोगों की मौत हो गई। सीरिया के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि इस घटना में 20 लोग घायल हुए हैं। फिलहाल किसी भी गुट ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। सुरक्षा बलों ने हमले की जांच के लिए इलाके की घेराबंदी कर दी है। दमिश्क के गवर्नर माहिर मारवान इदलिबी ने कहा है कि दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार।
1: स्पेन और पुर्तगाल फीफा फुटबॉल विश्व कप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। पुर्तगाल ने आज क्रोएशिया को 2-1 से हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई। इससे पहले स्पेन ने ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराकर अंतिम 16 में जगह पक्की की। मंगलवार को डलास में प्री क्वार्टर फाइनल में स्पेन का सामना पुर्तगाल से होगा। इससे पहले फ्रांस, नॉर्वे, कनाडा, मोरक्को, ब्राजील, पैराग्वे, बेल्जियम, अमेरिका और इंग्लैंड भी अंतिम 16 में पहुंच चुके हैं। प्री क्वार्टर फाइनल में सोमवार को इंग्लैंड का सामना मेक्सिको से होगा। अमेरिका मंगलवार को बेल्जियम के साथ खेलेगा। इस बीच भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका और भारत के बीच 2 मैच की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। यह श्रृंखला 15 से 27 अगस्त तक खेली जाएगी। पहला टेस्ट 15 अगस्त से गोल अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा। दूसरा टेस्ट 23 अगस्त से कोलंबो में खेला जाएगा। यह श्रृंखला ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है। उधर इंग्लैंड ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में पहुंच गया है। लंदन में कल दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका को 40 रन से हरा दिया। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने पहले सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराकर खिताबी मुकाबले में जगह बनाई। रविवार को लंदन के लॉर्ड्स में फाइनल में इंग्लैंड का सामना ऑस्ट्रेलिया से होगा। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: और खेल खबरों के बाद एक दुखद घटना। आंध्र प्रदेश के मरकापुरम जिले में आज सुबह कंभम के पास एक सड़क दुर्घटना में 4 लोगों की मौत हो गई और 8 अन्य घायल हो गए। ये दुर्घटना खाद से लदे एक ट्रक के ऑटो रिक्शा को टक्कर मारने से हुई। घायलों को गिदलूर और कुंभम के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर दुर्घटना के कारणों की जाँच शुरू कर दी है। बात मौसम की। उत्तराखंड में मॉनसून पूर्ण रूप से सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने आज कई जिलों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने राज्य के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। नैनीताल और बागेश्वर जिलों में तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून, टिहरी, पौड़ी, चमोली, उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग में भी कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश की संभावना है। विभाग ने संवेदनशील क्षेत्रों को लोगों को सतर्क रहने और यात्रा करते समय सावधानी बरतने की सलाह दी है। दक्षिण पश्चिम मानसून दिल्ली, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ चुका है। मौसम विभाग ने गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। वहीं छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, केरल, माहे, उत्तराखंड और विदर्भ में मूसलाधार बारिश हो सकती है। दिल्ली में दिन में बादल छाए रहने के साथ हल्की बारिश की संभावना है। राजधानी में अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास से रहने का अनुमान है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
2: धन्यवाद फरहत। भारत और जापान के बीच कई महत्वपूर्ण समझौते होने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने सचित्र प्रकाशित किया है। जनसत्ता लिखता है, भारत और जापान मिलकर बनाएंगे सैन्य साजो सामान, मोदी और तकाईची में शिखर वार्ता। अमर उजाला ने जापान के प्रधानमंत्री के संतूर पर हाथ आजमाने का चित्र दिया है। पत्र लिखता है, संतूर बजाकर चौंकाया पीएम मोदी समेत कई लोग हैरान। सुप्रीम कोर्ट द्वारा AI से बने फर्जी फैसलों की कानूनी मिसालें देने पर सख्त रुख अपनाने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने दिया है। दैनिक जागरण लिखता है, AI से लिखे गए फर्जी फैसले जहरीली गैस जैसे। अदालत ने कहा, फैसलों के प्रति जीरो टॉलरेंस होना चाहिए। नीट JEE में निर्णायक हो सकते हैं 12वीं के अंक। नीट पुनर्परीक्षा के नतीजे 20 जुलाई को। हिंदुस्तान की सुर्खी है, राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में फिर राम मंदिर परिसर पहुंची SIT, रडार पर हैं 100 लोग। ट्रस्टी से पूछताछ, नवभारत टाइम्स की खबर है। शेयर बाजार में निवेशकों पर 3 लाख करोड़ की बारिश, सेंसेक्स में 579 अंकों का उछाल, लोकसत्ता की खबर है। अमीर युवाओं की पसंद बदली, 40% से ज्यादा भारतीय छुट्टियां मनाने के लिए अब कोरिया, मिस्र, जापान, मालदीव जैसे नए देश जा रहे। दैनिक भास्कर की सुर्खी है। पत्र लिखता है, ट्रेवल इंश्योरेंस लेने वाले हर साल 10% बढ़ रहे। खामेनेई के अंतिम संस्कार यात्रा से पहले

0: निगरानी हुई कड़ी, कई राष्ट्रीय अध्यक्षों के साथ 2 करोड़ लोग जुड़ सकते हैं, राजस्थान पत्रिका की खबर है। कई समाचार पत्रों ने देश भर के कई राज्यों में हो रही बारिश का चित्र दिया है। देश बंधु की सुर्खी है, दिल्ली में मानसून ने दी दस्तक, लोगों को तेज धूप और गर्मी से मिली राहत। राजस्थान पत्रिका के शब्द हैं, राजस्थान और दिल्ली पहुंचा मानसून, 2 दिन अति बारिश का अलर्ट। हिंदुस्तान ने संपादकीय पन्ने पर भारत जापान के सभ्यतागत संबंध पर लेख प्रकाशित किया है, शीर्षक है भारत जापान रिश्तों में नई गर्मजोशी।
1: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाईची ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस के प्रतिद्वंद्वी गुटों से पार्टी संगठन के चुनावों और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के संबंध में परस्पर विरोधी दावों पर जवाब मांगा। जम्मू कश्मीर में पहलगाम और बालतल दोनों रास्तों से वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा शुरू। ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामनेई सुरक्षा कारणों से अपने पिता अली खामनेई के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होंगे। पुर्तगाल और स्पेन ने फीफा विश्व कप के अंतिम 16 में जगह बनाई। और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका के खिलाफ भारत के 2 मैचों की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला का कार्यक्रम घोषित किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

समाचार के बाद एक बार फिर से स्वागत है हमारे सभी श्रोताओं का आकाशवाणी अयोध्या में। प्रातः के 8:15 हुए हैं। प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम सुर संगम।

0: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्व विख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
1: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना।
3: टॉल कर ही नहीं, इनकर भी मिलता है, बच्चे भी खरीद सकते हैं।
2: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा। जानो फिर मानो।
4: आकाशवाणी अयोध्या से अपने प्रतिष्ठान, प्रोडक्ट, सेवाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए हमें मेल कीजिए ayodhyaakashwani@gmail.com ayodhyaakashwani@gmail.com
5: आकाशवाणी अयोध्या से आप सुन रहे हैं सुगम संगीत का कार्यक्रम सुर संगम, और अब आइए सुनते हैं गुलाम अली की आवाज में ये गजल।

गुलाम अली की गाई इस गजल के साथ सुगम संगीत का कार्यक्रम सुर संगम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 8:23 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम प्रणाम अयोध्या।

0: प्रणाम अयोध्या।
1: विविध रंगों से सजा कार्यक्रम प्रणाम अयोध्या में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। कार्यक्रम में सबसे पहले आज की बात, और आज की बात का विषय है अल्पसंख्यक समुदाय वाली मलिन बस्तियों का सुधार।

यहाँ दोस्तों अल्पसंख्यक समुदायों की मलिन बस्तियों का सर्वांगीण विकास एक ऐसे भारत की परिकल्पना को साकार करता है जहाँ किसी भी नागरिक की पहचान उसके अभावों से नहीं बल्कि उसकी क्षमताओं अवसरों और उपलब्धियों से हो। जब विकास की उज्जवल किरणें समाज के अंतिम छोर तक समान रूप से पहुंचती है तभी सामाजिक न्याय सुदृढ़ होता है, राष्ट्रीय एकता सशक्त होती है। वसुधैव कुटुंबकम तथा सर्वे भवन्तु सुखिना जैसे भारतीय आदर्श वास्तविक अर्थों में जीवंत हो उठते हैं। अल्पसंख्यक समुदायों की मलिन बस्तियों का विकास केवल भौतिक संसाधनों के विस्तार का प्रयास नहीं बल्कि सामाजिक मानवीय गरिमा संवैधानिक मूल्यों और समावेशी विकास की भावना को साकार करने का सशक्त माध्यम है। ये बस्तियां समाज के उस वर्ग का प्रतिनिधित्व करती हैं जिसकी आकांक्षाएं भी उतनी ही व्यापक हैं जितनी किसी अन्य नागरिक की। इन बस्तियों में सुरक्षित एवं सम्मानजनक आवास, स्वच्छ पेयजल, सुदृढ़ जल निकासी व्यवस्था, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक स्वास्थ्य सेवाएं, स्वच्छ एवं हरित परिवेश, निर्बाध विद्युत आपूर्ति, सम्मानजनक आजीविका के अवसर पर उपलब्ध कराना है। साथ ही कौशल विकास, उद्यमिता, महिला सशक्तिकरण, सामाजिक जागरूकता जैसे प्रयास इन समुदायों का आत्मनिर्भर, आत्मविश्वास और सामाजिक सशक्तिकरण की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाते हैं। जब शासन की दूरदर्शी नीतियां, प्रशासन की उत्तरदायित्वपूर्ण कार्यशैली और समाज की सक्रिय सहभागिता एक सूत्र में बंधती है तब विकास केवल योजनाओं तक सीमित नहीं रहता बल्कि जीवन के प्रत्येक आयाम में सकारात्मक परिवर्तन का आधार बन जाता है। शिक्षा से चेतना, स्वच्छता से स्वास्थ्य, कौशल से आत्मनिर्भरता और सम्मान अवसरों से सामाजिक सम्मान का मार्ग प्रशस्त होता है। यही परिवर्तन इन बस्तियों को अभाव और उपेक्षा के प्रतीक से आशा, प्रगति और आत्मविश्वास के केंद्र में परिवर्तित करता है।

अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्व विख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267

0: 9889801।
1: बीएड, डीएलएड, बीटीसी, डीएचपी, डीफार्म, बीफार्म और जीएनएम जैसे कोर्सेज में प्रवेश प्रारंभ है। संपर्क करें विदुषी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट गौड़ा बसंतपुर कटेहरी अंबेडकर नगर। प्रवेश के लिए कॉल करें 9005141838। सेवानिवृत्त आर्मी जवानों के लिए खुशखबरी,
2: आनंद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल
1: अब ECHS से इम्पैनल्ड। आर्मी के सभी रिटायर्ड जवानों को मिल रहा है कैशलेस इलाज।
2: आयुष्मान भारत योजना, पंडित दीनदयाल योजना और तमाम इंश्योरेंस पॉलिसियों के तहत
1: कैशलेस इलाज। आनंद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, मछली मंडी, नियामा, अयोध्या। कॉल करें 6386907006।
3: आपके संदेश
4: संदेश से आते हैं,
3: आपके गीत
4: मैं ये गीत सुनाता हूँ।
3: आपके संदेश आपके गीत कार्यक्रम में अपनी पसंद के फिल्मी गाने आप सुन सकते हैं प्रतिदिन सुबह 9 बजे से। फरमाइश भेजते समय सबसे पहले कैपिटल में बिना स्पेस दिए ASAG लिखें, फिर स्पेस देकर फिल्म का नाम, गीत के बोल, प्लेबैक सिंगर्स के नाम, अपने नाम और जिले का नाम लिखकर भेज दें आकाशवाणी अयोध्या के व्हाट्सएप नंबर 8303219911 पर।

0: digital. Download Waves OTT app now and watch for free.
1: आकाशवाणी अयोध्या से अपने प्रतिष्ठान प्रोडक्ट सेवाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए हमें मेल कीजिए ayodhyaakashwani@gmail.com ayodhyaakashwani@gmail.com
2: अपने वाहन को भीड़ भाड़ वाली जगहों पर इधर उधर पार्क ना करें, कृपया सुरक्षित पार्किंग स्थल पर ही गाड़ी को पार्क करें।
3: ट्रैफिक रेड लाइट का उल्लंघन कभी ना करें, आपकी जरा सी लापरवाही के कारण दुर्घटना घट सकती है। दाएं या बाएं मुड़ने से पहले अपने वाहन में लगे इंडिकेटर का इस्तेमाल करें।
2: अपने वाहन में ओवरलोडिंग से बचें और अपने वाहन से हमेशा अच्छी माइलेज पाने के लिए समय समय पर वाहन की मेंटेनेंस करवाते रहें।
3: गलत तरीके से ओवरटेक ना करें और अपनी लेन में ही गाड़ी चलाएं। बार बार हॉर्न का प्रयोग ना करें।
2: दो पहिया गाड़ी चलाते समय हेलमेट का प्रयोग अवश्य करें, यह आपकी सुरक्षा और आपके हित में भी है।
3: हमेशा ट्रैफिक नियमों का पालन कीजिए, ये आपकी ही सुविधा और सुरक्षा के लिए ही बनाए गए हैं।
4: आंखों के पर्दे की समस्या, मोतियाबिंद, लेजर चिकित्सा या मोटे चश्मों से छुटकारा, 20 वर्षों से आपका अपना सुनयन आई हॉस्पिटल, निकट वीमार्ट नियावा फैजाबाद अयोध्या। आंखों की सभी समस्याओं का आधुनिक और बेहतर उपचार, हजारों आंखों को नई रोशनी देने वाले प्रख्यात नेत्र सर्जन डॉक्टर गजेंद्र पाल द्वारा संचालित सुनयन आई हॉस्पिटल, निकट वीमार्ट नियावा फैजाबाद अयोध्या। फोन करें 9838100840।
5: सुनिए जी, सुनिए, आपसे ही बात कर रहे हैं। क्या आपने 12th पास कर ली या घर में कोई 10th या 12th पास है तो उन्हें 6 जुलाई को घर मत बैठने दीजिए। युवा उड़ान करियर और कौशल मेला में लाइए, जहां खेल खेल में तकनीकी करियर को समझने और सफल युवाओं से बातचीत करने का मौका मिलेगा। सुबह 9 बजे से 12 बजे तक पैकर स्किल्स, यश ITI, दर्शन नगर। कल कहीं ये ना कहना, काश एक बार देखने चले जाते।
6: आकाशवाणी अयोध्या से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम प्रणाम अयोध्या। और अब आइए सुनते हैं जानकारी। विषय है बरसात के मौसम में पाचन से जुड़ी समस्या और उसका आयुर्वेदिक समाधान। जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर आनंद उपाध्याय, वरिष्ठ आयुर्वेदिक चिकित्सक अयोध्या, और आपसे बातचीत की है सदक हुसैन ने।
7: हमारे देश में तरह तरह की ऋतुएं हैं, मौसम बदलता है, एक मौसम जाता है दूसरा आता है, और इस वक्त बरसात का मौसम आ गया है। और जब बारिश की हम बात करते हैं तो हमारे स्वास्थ्य की भी चिंता कहीं ना कहीं बढ़ती है। बरसात के मौसम में स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है और हमें इससे कैसे बचना होता है, इसकी चिकित्सा कैसे करनी होती है, इस महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है वरिष्ठ आयुर्वेदिक चिकित्सक डॉक्टर आनंद उपाध्याय जी को। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
8: बहुत बहुत धन्यवाद।
7: आज जिस विषय को लेकर हम डॉक्टर साहब से बातचीत करेंगे वो है बरसात के मौसम में पाचन से जुड़ी समस्या और उसका आयुर्वेदिक समाधान। तो डॉक्टर साहब, इससे पहले हम सीधे पाचन पर बात करें।

0: जी
1: पहले इस मौसम की बात करें
0: जी,
1: आखिर बरसात आने से हमारे स्वास्थ्य पर कैसा असर पड़ता है?
0: जी देखिए, बहुत अच्छी बात है। ये मौसम परिवर्तन
1: जी
0: प्रकृति की अपनी व्यवस्था है। सर्दी, गर्मी और बरसात, यह तीन प्रमुख मौसम है। एक ऋतु के बाद दूसरी ऋतु शुरू होती है, तो इसके बीच का जो समय है वो संक्रमण काल कहलाता है।
1: बिल्कुल,
0: इस काल में न तो पहले वाली ऋतु पूर्णतः समाप्त होती है और न ही अगली ऋतु पूरी तरह से आती है। मौसम के इस बदलाव से सेहत पर काफी प्रभाव पड़ता है। मौसम के संक्रमण के दौर में हर दिन मौसम बदलता रहता है। भीषण गर्मी के बीच हवाओं में तेजी से उतार चढ़ाव होता है। गर्मी और बारिश के बीच के समय में कई मौसमी बीमारियां आने की आशंका रहती।
1: तो डॉक्टर साहब, जैसा कि आप बता रहे हैं कि ये मौसम बड़ा क्रिटिकल होता है
0: जी,
1: बदलाव का एक दौर होता है,
0: ना
1: पूरी तरह से गर्मी ना पूरी तरह से सर्दी, और ऐसे में जो कीटाणु होते हैं उनके बढ़ने की संभावना भी बढ़ जाती है।
0: जी जी बिल्कुल बढ़ जाती है।
1: क्या सावधानियां बरतें इस मौसम में जो स्वास्थ्य सही रहे?
0: देखिए, बरसात के मौसम में तो हम ये कहेंगे कि आदमी को ग्रीष्म काल में जो हमारी जठराग्नि है
1: जी
0: वो मंद पड़ जाती है। उसके मंद पड़ने से वर्षा काल में और भी मंद हो जाती है। अतः खाने पीने में हम लापरवाही न करें, देर रात भोजन न करें
1: जी।
0: बरसात में हल्का ताजा सुपाच्य भोजन करना चाहिए। हरी पत्तेदार सब्जियों को काटने के बाद गुनगुने पानी से साफ करें
1: जी।
0: उसके पश्चात पकाने में प्रयुक्त करें। संभव हो तो साग सब्जियों का प्रयोग कम ही करें। बरसात में
1: सब यहाँ रोकूंगा मैं
0: जी।
1: आप कह रहे हैं कि साग सब्जियों का प्रयोग बारिश में कम करें, इसके क्या कारण है?
0: इसके कारण यह है कि बरसात में कीड़े भी उत्पन्न हो जाते हैं
1: जी। बिल्कुल,
0: तो उसमें दिखाई भी नहीं पड़ेगा, और अगर कीड़े शरीर में पेट में चले जाएंगे तो उससे संक्रमण फैलेगा।
1: यानी कि बहुत सारे कीड़े हमें जो सब्जी में स्पष्ट दिख रहे हैं आंखों से, और बहुत से ऐसे भी हैं जो हमें दिखाई नहीं दे रहे
0: जी, जी, जी।
1: उनसे बचाव करना है,
0: उनसे बचाव करना है।
1: और इसीलिए आपने कहा कि उसको गर्म पानी में पहले धुल लें
0: और धुल करके फिर उसको बनाएं
1: जी।
0: और अगर नहीं कर सकते हैं तो हो सके तो साग सब्जी का प्रयोग कम करें, दाल का प्रयोग कर लें। देखिए, भोजन के लिए जो है हम कोशिश करें कि ताजा जो भी है सुपाच्य भोजन करें, हल्का भोजन करें, और उसको गुनगुने पानी से पहले धुल लें। और हम तो यही कहते हैं कि अगर आपके अंदर थोड़ा सा भी मतलब खाने की जिज्ञासा है, अगर भूख लगी है, तो आदमी जल्दबाजी में भोजन को तत्काल कैसे भी मिल जाए उसको कर लेता है।
1: बिल्कुल,
0: तो हम ये नहीं चाहते हैं कि आपके अंदर कोई संक्रमण फैले और उसके पहले ही आप सचेत हो जाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो इसलिए जो है सब्जियों को हम लोग बताते हैं कि धुल करके, सफाई करके, ऐसे भी आपको वैसे भी बताया जाता है कि जितने भी आजकल छिड़काव होते हैं पेस्टिसाइड के
1: जी,
0: वो शायद नुकसानदायक सबके लिए होते हैं। आप देख लीजिए, लौकी देख लीजिए, कद्दू देख लीजिए, कोई भी सब्जी देख लीजिए, तो उसको बिना धुले बिना खूब साफ किए जो है बनाना नहीं चाहिए। और कोशिश कीजिए गर्म पानी से बनाने से जो है उसके जो संक्रमण है, कीटाणु है, वो मर जाएंगे। इस मौसम बरसात के मौसम में हम जितना हल्का भोजन करेंगे वो सुपाच्य रहेगा और आसानी से पच जाएगा। तो भोजन में जैसे मीठी खीर है, लौकी है
1: जी,
0: मेथी है, ताजा जमा हुआ घर का दही अगर खा सकें तो खाएं, और मौसमी फल जो भी हो ले लें, आम है, जामुन है, ये सब चीजें आजकल मिल रही है, मक्का है
1: जी जी,
0: ये सब समय समय पर मिलता रहता है, उसका सेवन हम कर सकते हैं। लेकिन कोशिश करें
1: जी
0: कि जैसे दही भी ले रहे हैं तो एक बार अगर जैसे आदमी कढ़ी बना करके खा लेता है तो दही भी पक जाता है उसमें।
1: अच्छा,
0: तो उसका भी सेवन अगर हम करें तो कच्चा कम करें, जैसे मतलब कच्चा आम है उसका सेवन कम करना चाहिए,
1: उसको आम पन्ना बना ले
0: जी, जी
1: जी
0: आम का पन्ना बना ले, उबाल करके पका करके, इस तरह से अगर हम करेंगे तो ज्यादा फायदा रहेगा हमारे लिए।
1: चूंकि आप डॉक्टर साहब पाचन की बात कर रहे हैं तो ध्यान आता है कि अगर हमारा पाचन तंत्र दुरुस्त हो
0: जी,
1: भोजन सही से पच रहा और सही भोजन हम ले रहे हो, तो स्वास्थ्य का मुझे लगता सबसे पहला सोपान यही है और वहां से सब कुछ ठीक हो जाता है।
0: देखिए, कहा भी गया है, एक उदाहरण है, पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख हो जेब में माया, तीजा सुख हो बस में नारी, चौथा सुख हो पुत्राधिकारी।
1: जी जी जी,
0: तो हमें पहला सुख निरोगी काया जो कहा गया है,
1: सर्वप्रथम जी
0: हम सर्वप्रथम पहले ये ध्यान दें कि अगर हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा,
1: वे रख सकते हैं,
0: सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसके लिए जो है हम कोशिश करें, जो हमारी अग्नि या पाचन शक्ति जो कमजोर पड़ जाती है
1: जी
0: बरसात के मौसम में
1: जी, जी।
0: उसको

0: तो हम ऐसी कुछ चीजें खाएं जिससे कि वो सही हो जाए।
1: बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, पाचन तंत्र को सही करने के लिए और क्या तरीके अपनाए जाते हैं आयुर्वेद के अनुसार?
0: पाचन शक्ति को मजबूत करने के लिए जैसे गैस ना बने, ऐसे मौसम में अपच, एसिडिटी, दस्त जैसी समस्याएं आम हो जाती हैं। इसके बचने के लिए हम ताजा हल्का गर्म भोजन करें। आयुर्वेद के अनुसार अदरक है, अजवाइन है, जीरा है और हींग का प्रयोग अधिक करना चाहिए, जिससे कि हमारी पाचन शक्ति मजबूत हो जाएगी। खास करके बरसात में हमारा पाचन जो है वो मजबूत नहीं होता है, इसलिए हम उसके लिए कुछ आयुर्वेदिक उपचार करें तो ज्यादा अच्छा है। घरेलू उपचार में ज्यादा अच्छा रहेगा
1: जी।
0: जैसे त्रिफला है, रात को हम सोते समय एक आधा चम्मच जो है सुबह शाम ले लें, ज्यादा अच्छा रहेगा। और उसको गुनगुने पानी से लेना चाहिए।
1: अच्छा।
0: क्योंकि बरसात के मौसम में हम प्रयास ये करें कि जितना अधिक से अधिक हो वो हम गुनगुने पानी का ही प्रयोग करें, जो भी चीज है गर्म करके ही सेवन करें।
1: पानी को भी अगर हम उबाल लें बरसात में,
0: पानी को उबाल करके रख लें,
1: हाँ।
0: चाहे फ्रिज में रख लें, चाहे जैसे रख लें, उसको ले सकते हैं आप।
1: बिल्कुल ठीक।
0: और बिना उबाले पानी को लेना नहीं चाहिए क्योंकि बैक्टीरिया पनप जाते हैं,
1: और बारिश में खासतौर से।
0: बारिश में खास करके
1: जी,
0: ये भी हम ध्यान रखें कि हम अपने आसपास के जो गड्ढे हों, कूलर हों, पंखे हों, जहां पानी का भराव होता है गड्ढों में, उसको भी हम ढक दें, कोशिश करें, और फुलस्तीन के कपड़े पहने
1: जी।
0: इस तरह से हम अपने सर को ढक करके रखें। और आजकल मच्छर भी पनप सकते हैं
1: जी।
0: उससे तरह तरह के जीवाणु फैलते हैं, तो बरसात के मौसम ये सब बहुत ज्यादा नुकसानदायक है।
1: क्या कुछ ऐसे योगासन भी हैं जो इसमें हमारी मदद कर सकते?
0: हाँ बिल्कुल, योगासन है, जैसे वज्रासन है। जब हम खाना खाएं
1: जी,
0: तो खाना खाने के समय हमें वज्रासन का इस्तेमाल 10-15 मिनट करना चाहिए
1: जी,
0: जिससे हमारी पाचन शक्ति ठीक हो जाती है। और वज्रासन में बैठने के बाद हम भोजन करें तो आसानी से हमारी भोजन और गैस की समस्या नहीं रहेगी।
1: अच्छा।
0: दिन में सोने से बचना चाहिए, जिससे कब बढ़ता है, पाचन क्रिया धीमी हो जाती है
1: बारिश में।
0: जी हाँ, बारिश में दिन में नहीं सोना चाहिए। और कोशिश करें कि हल्का भोजन करें, भारी तली हुई भुनी चीजों का इस्तेमाल न करें। हमारा आहार विहार अगर सही रहेगा
1: तो
0: हम निश्चित रूप से स्वस्थ रहेंगे। कोशिश करें हम हल्के से हल्के भोजन का प्रयोग करें, और त्रिफला का सेवन ज्यादा करें। गैस बनती है तो अभिपत्तिकर चूर्ण भी ले सकते हैं, और चित्रकारी बटी भी ले सकते हैं।
1: डॉक्टर साहब, चलते चलते अगर और कोई बात हमारे श्रोताओं के लिए महत्वपूर्ण हो कि बरसात के मौसम में वो अपने स्वास्थ्य का कैसे अच्छे से ध्यान रखें?
0: बरसात के मौसम में हम कोशिश करें कि पहली बात तो नंगे पैर नहीं चलना चाहिए
1: जी।
0: आजकल रात में कीड़े मकोड़े निकलते हैं तो ध्यान रखें। हम टहलने भी निकल रहे हैं तो भी हम कम से कम टॉर्च लेकर के भी निकलें। और इस तरह से हम ही कहना चाहेंगे कि वो हल्का से हल्का भोजन करें, सुपाच्य भोजन करें, अपने आहार और दैनिक दिनचर्या में परिवर्तन रखें। अगर किसी प्रकार से कोई दिक्कत होती है तो अपने नजदीकी चिकित्सक से परामर्श करें
1: जी। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए, हमारे श्रोताओं को इतनी सारी अच्छी स्वास्थ्य संबंधी सावधानियां और उनके उपचार घरेलू कैसे हो सकते हैं बताया। हम तो यही कहेंगे श्रोताओं से, इन सब चीजों का ध्यान रखें और इस बारिश का पूरा आनंद लें, क्योंकि बरसात एक बड़ा अच्छा मौसम माना जाता है। गर्मी के बाद आता है तो कुछ ज्यादा ही अच्छा लगता है। आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए और बरसात के मौसम में पाचन से जुड़ी समस्याएं और उनका आयुर्वेदिक समाधान बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे जानकारी, बरसात के मौसम में पाचन से जुड़ी समस्या और उसका आयुर्वेदिक समाधान। इस विषय पर बहुत ही अच्छी जानकारी दी डॉक्टर आनंद उपाध्याय, वरिष्ठ आयुर्वेदिक चिकित्सक अयोध्या, और आपसे बातचीत की थी सदक हुसैन ने। आकाशवाणी अयोध्या से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम प्रणाम अयोध्या, और अब कार्यक्रम में समाचार पत्रों से शहर की कुछ खास खबरें।

परीक्षा सुबह 9:30 से दोपहर 12 बजे तक तथा दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 2:30 से शाम 5 बजे तक हुई। पहले दिन उच्च प्राथमिक टीटी की परीक्षा संपन्न हुई। दूसरे दिन शुक्रवार को प्रथम पाली में उच्च प्राथमिक तथा दूसरी पाली में प्राथमिक स्तर की टीईटी आयोजित की गई।

आम महोत्सव मेजिले से 200 किसान अपने उत्पाद के साथ सर्किट हाउस स्थित राजकीय उद्यान प्रातः 6 बजे से रवाना होंगे। अधीक्षक राजकीय उद्यान धर्मेंद्र चंद ने बताया कि महोत्सव का उद्घाटन मुख्यमंत्री करेंगे। 5 जुलाई को उद्यान मंत्री प्रतिभागी विजेताओं को पुरस्कृत करेंगे। जिले के कृषक अपने आम उत्पादों का प्रदर्शन महोत्सव में स्टॉल लगाकर कर सकेंगे।

अयोध्या विकास प्राधिकरण की ओर से प्राधिकरण क्षेत्र के अंतर्गत संचालित कोचिंग संस्थान अस्पताल होटल व अन्य व्यावसायिक गतिविधियों के संचालकों के साथ शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जाएगी। बैठक दोपहर 2 बजे प्राधिकरण सभागार में होगी।

स्कूली बच्चों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए परिवहन विभाग ने 1 से 15 जुलाई तक मिशन सेफ फ्यूचर अभियान शुरू किया। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी गुलाब चंद ने बताया कि जिले में बिना वैध फिटनेस व परमिट के संचालित स्कूल वाहनों के खिलाफ विशेष जांच अभियान चलाया जा रहा है। अब तक 25 स्कूल प्रबंधकों प्रधानाचार्यों को नोटिस फोन और व्यक्तिगत संपर्क के माध्यम से 7 जुलाई तक सभी स्कूल वाहनों के फिटनेस और परमिट वैध कराने के निर्देश दिए गए हैं। चेतावनी दी गई है कि 8 जुलाई से बिना वैध फिटनेस या परमिट के संचालित स्कूल वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अवध विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए संबद्ध महाविद्यालयों में संचालित स्नातक एवं परा स्नातक पाठ्यक्रमों के ऑनलाइन आवेदन और पंजीकरण की अंतिम तिथि 30 जून से बढ़ाकर 31 जुलाई कर दी है।

0: राज्य ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश और स्वदेश संस्थान सागर कला भवन अयोध्या ने एक 20 दिवसीय विविध कला कार्यशाला का आयोजन किया। इसके समापन पर 3 दिवसीय प्रदर्शनी, सम्मान समारोह, कवि सम्मेलन और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान कला साधकों को प्रमाण पत्र व पदक प्रदान कर सम्मानित किया गया। और इन्हीं खबरों के साथ कार्यक्रम प्रणाम अयोध्या का आज का सफर बस यहीं तक।
1: अवध क्षेत्र का सबसे विश्वसनीय आंखों का अस्पताल आपका अपना श्रीराम नेत्रालय अबनियावा रोड रिकाबगंज फैजाबाद में भी उपलब्ध। 60,000 से भी अधिक सफल मोतियाबिंद ऑपरेशन का अनुभव वरिष्ठ नेत्र सर्जन डॉक्टर पूजा थापर एवं डॉक्टर संजीव थापर द्वारा संचालित। यहां उपलब्ध है अत्याधुनिक रेटिना एवं ग्लूकोमा क्लिनिक की सुविधाएं। साथ ही ये अयोध्या का पहला एसिलॉर एक्सपर्ट ऑप्टिकल सेंटर है, जहां चश्मे की जांच की जाती है विश्व स्तरीय ऑटो फोरॉप्टर एवं आई रूलर मशीन द्वारा। बच्चों के लिए खास मायोपिया कंट्रोल क्लिनिक की सुविधा भी उपलब्ध है। तो आंखों की हर समस्या के लिए श्रीराम नेत्रालय, पता नियावा रोड रिकाबगंज फैजाबाद। कॉल करें 91-16-76-47-46।
2: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
3: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, हर टन में ज्यादा लंबाई, ज्यादा फायदा, कम खर्च में ज्यादा निर्माण। RHL गोल्ड TMT सरिया 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो।

0: hermano.
1: प्रणाम अयोध्या।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम प्रणाम अयोध्या। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपके संदेश आपके गीत।

व्हाट्सएप पर आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपके संदेश आपके गीत के आज के सफर में मैं ऋचा अपने सभी श्रोताओं का स्वागत करती हूं। कार्यक्रम के आरंभ में आइए सुनते हैं फिल्म गदर 2 से ये गीत, और इस गीत को सुनने की फरमाइश की है जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज रिफाकत, मोहम्मद रिहान, समरीन परवीन और माहिरा नूर। तो आइए सुनते हैं आप सबकी पसंद पर फिल्म गदर 2 से ये गीत।

0: 10 लाख की लॉटरी मुझे
1: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
2: RBI कहता है
3: जानकार बनिए सतर्क रहिए।
4: हेलो
5: हेलो सुनो टेलीफोन नंबर
6: माय नंबर इज
7: 7376804090। लाइव हेलो अयोध्या प्रोग्राम आप सुनते हैं सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार और शुक्रवार सुबह 9:30 से, शनिवार और रविवार को दोपहर 1 से और रात 9:30 से लेकर 10:30 तक, जिसमें मंगलवार को हेलो अयोध्या प्रोग्राम रात 10 तक। हेलो अयोध्या में अपनी पसंद का गाना सुने और दिलचस्प बातें भी करें। 7376804090।
8: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
9: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
10: आकाशवाणी अयोध्या से अपने प्रतिष्ठान प्रोडक्ट सेवाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए हमें मेल कीजिए ayodhyaakashwani@gmail.com ayodhyaakashwani@gmail.com।
11: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्व विख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
12: फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपके संदेश आपके गीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के अयोध्या।

केंद्र से। कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं फिल्म उमराव जान से, और इस गीत को सुनने की फरमाइश की है पलारी छत्तीसगढ़ से नीतीश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग टेलर, तनुजा देवांगन और ईशांत देवांगन। तो आइए सुनते हैं आप सबकी पसंद पर फिल्म उमराव जान से ये गीत।

कार्यक्रम में अगली फरमाइश आई है बनक बन पुकरा पोस्ट टड़वा डेहुड़ी बाजार सुहावल अयोध्या से रमेश यादव की और आपने सुनना चाहा है फिल्म में फीवर से इस गीत को तो आइए सुनते हैं आपकी पसंद पर फिल्म फीवर से ये गीत नेहा कक्कड़ और टोनी कक्कड़ की आवाज़ में

0: आकाशवाणी अयोध्या से दिन 12:30 से प्रतिदिन सुनिए अवधी लोक गीतों से सजा लोक रंग कार्यक्रम, जिसमें प्रत्येक सोमवार अपनी फरमाइश का लोकगीत सुनिए। व्हाट्सएप नंबर 8303219911 पर सबसे पहले कैपिटल में लोक रंग टाइप करें, LOKRANG स्पेस देकर अपने नाम लिखें, पता लिखें और अपनी फरमाइश का लोकगीत भेज दें। लोक रंग के फेसबुक पोस्ट पर भी आप फरमाइश लोकगीत की कर सकते हैं। तो फिर दिन 12:30 से प्रतिदिन सुनिए आकाशवाणी अयोध्या से लोक रंग कार्यक्रम।
1: मुझे ना लखा मंगा दे रे ओ सैया दीवाने।
2: अरे अभी पिछले हफ्ते ही तो शॉपिंग में जो दिलवाया था उसका क्या होगा?
1: नहीं, मुझे मेरी सहेली वाला ही चाहिए। मुझे वो दुकान भी मालूम है, उसने जहाँ से खरीदा था।
2: अच्छा, वेरी स्मार्ट।
3: क्या आप चाहते हैं आपकी दुकान को सभी लोग जाने और ले जाएं वहाँ से सामान?
2: हाँ हाँ, क्यों नहीं।
3: तो फिर किसी भी कार्य दिवस में प्रोडक्ट का विज्ञापन बुक कराएं आकाशवाणी अयोध्या से,
4: या हमें ईमेल करें ayodhyaakashvani@gmail.com पर।
0: ayodhyaakashvani@gmail.com। शुभवाणी, लाभवाणी, आकाशवाणी अयोध्या।
5: सजीव फोन इन फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम आप सुन रहे हैं। हेलो अयोध्या। हेलो।
6: हेलो मैम, नमस्ते। गुड मॉर्निंग।
5: जी नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या नाम है?
6: मनप्रीत सिंह बात कर रही हूँ, अमृतपुर मनकापुर जिला जोधपुर से।
5: जी स्वाति जी, मैं बहुत ठीक हूँ, और आप कैसी हैं?
6: हम भी ठीक हैं। आपके प्रोग्राम सुन रहे
5: हैं। जी जी,
6: फोन लगा के
5: एकदम बहुत ही अच्छा किया आपने, फोन भी लगा दिया और आपकी बात भी हो गई। तो क्या हो रहा है?
6: जी मैम, बस प्रोग्राम सुन रहे थे, बैठे थे
5: जी,
6: रेडियो सुनते हैं, घर पे रहते हैं मैम, मुझे कुछ नहीं हो रहा है
5: एकदम। तो क्या करती हैं आप?
6: पेपर होने वाला है 15 जुलाई के बाद, और घर पे रहते हैं अभी, तैयारी कर रहे हैं।

0: पे रहती हैं, पढ़ाई करती हैं और रेडियो सुनती हैं।
1: जी मैम।
0: जी बहुत ही अच्छी बात है, मस्त रहिए और मस्ती से कोई काम करिए तो उसमें सफलता निश्चित ही मिलती है।
1: जी
0: तो स्वाति जी आज कौन सा गीत सुनेंगी?
1: मैम आज हमको धर्मात्मा क्या कुछ लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो और मैं आपको रहेगा और जितने भी सुनने वाले हैं सभी को।
0: जी और आपको भी।
1: जी मैम थैंक यू। और मैं नाम ले लें।
0: जरूर जरूर
1: जी। अवजी सर भगवान जी सम्मान जी हो गए और मेरी दीदी ज्योति सिंह है, सुधा सिंह है और जितने भी श्रोता लाइव में है सभी को गाना डेडिकेट है, सभी को मेरा प्यार नमस्कार। गुड मॉर्निंग
0: जी स्वाति जी। तो अब एंजॉय कीजिए अपने इस प्यारे से गीत को।

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हेलो अयोध्या, जहां हर आवाज में गूंजता है विश्वास। हेलो।
1: हेलो दीदी, नमस्कार।
0: जी नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुभ नाम
1: जी? धन्यवाद दीदी। ग्राम जी, ग्राम हीरापुर, जिला सीहोर, मध्य प्रदेश से भगवान सिंह परमार बोल रहा हूँ दीदी।
0: जी भगवान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपका नाम भी बहुत ही प्यारा है।
1: जी दीदी धन्यवाद, अच्छा है मेरा नाम।
0: जी जी, तो क्या करते हैं आप?
1: दीदी हम खेती किसानी करते हैं और अभी किसानी के काम में खेत पर आए थे और आपका कार्यक्रम सुन रहे थे, तो हमने नंबर हेड के कॉल मिला है दीदी, तो मिल भी गया।
0: बहुत अच्छी बात है, एक ही बार में आपकी कॉल लग गई।
1: जी हाँ दीदी, एक बार नंबर ट्राई किया और लग गया।
0: चलिए बहुत अच्छी बात है। तो आज कौन सा गीत सुनेंगे आप?
1: दीदी फिल्म का नाम है आई मिलन की रात और गाने के बोले मैंने किसी को दिल दे दिया।
0: चलिए तो हम सुना दें आपका गीत।
1: दो तीन दोस्तों को याद कर सकते हैं क्या?
0: एकदम एकदम जरूर याद कर लीजिए।
1: जी गुंजन तिवारी जी हैं अयोध्या से, कानपुर से पूनम दीदी हैं, अभी स्वाति सिंह जी का कॉल आया था गोंडा से, उनको भी डेलीकेट रहेगा, प्रेम सिंह सिसोदिया जी हैं और आपको डेलीकेट रहेगा, और आपके यहाँ से आरजे हैं अमरजीत सर, उनको भी डेलीकेट।

0: चलिए
1: आपकी पसंद पर हमारे सभी श्रोताओं को, हम सभी को सुनते हैं ये प्यारा सा गीत जी। कॉल करने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।
0: धन्यवाद।

0: आप सुन रहे हैं अवध के दिल अयोध्या के दिल की धड़कन कार्यक्रम हेलो अयोध्या। हेलो
1: हेलो, नमस्ते दीदी, गुड मॉर्निंग।
0: नमस्ते, गुड मॉर्निंग, आपका शुभ नाम?
1: मैं पिंकी बात कर रही हूँ, शिवगढ़ जिला रायबरेली से।
0: पिंकी जी, क्या करती हैं आप?
1: घर पे रहते हैं।
0: अच्छा, और रेडियो सुनती हैं, आकाशवाणी अयोध्या?
1: जी बिल्कुल सुनते हैं, मुझे आपके यहाँ के सभी कार्यक्रम अच्छे लगते हैं और खास करके बातें आसपास की कार्यक्रम मुझे बहुत अच्छा लगता है।
0: जी तो पिंकी, आज कौन सा गीत सुनेंगी?
1: अपनी पसंद का कोई भी सुना दीजिए।
0: चलिए हम सुनवाते हैं अपनी पसंद का गीत। कॉल करने के लिए धन्यवाद, उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा।
1: नमस्ते दीदी।
0: नमस्ते।

0: सच्ची सफलता और सच्ची खुशी का रहस्य है कि लोग क्या कहेंगे ये सोचना छोड़कर इस पर विचार कीजिए कि हम वो हैं जो हमें हमारी सोच ने बनाया है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी अयोध्या से सजीव फोन इन फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम हेलो अयोध्या। हेलो
1: हेलो
0: जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम हेलो अयोध्या में। जी आपका शुभ नाम?
1: मंजरी मिश्रा।
0: मंजरी मिश्रा जी, कहाँ से कॉल किया?
1: अयोध्या से।
0: जी क्या करती हैं आप?
1: मैं कुछ करती नहीं हूँ, घर पे रहती हूँ।
0: तो आज कौन सा गीत सुनेंगी?
1: आज वो फिल्म का गीत सुना देते हैं।
0: तो जैसे आप घर पे रहती हैं तो कुछ तो करती होंगी, जैसे आपका समय जो बीतता है उन समय में क्या करती हैं?
1: हाँ, मेरी समय बीत जाता है, खाना पीना बनाया, फिर उसके बाद भजन करने लगी।
0: वाकई बहुत अच्छा।
1: भजन से फुर्सत पा करके मंदिर में माँ के पास चली गई।
0: ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि आप ईश्वर का स्मरण करती हैं। जी जी, बहुत अच्छा समय बीतता है, वो बीतता नहीं है वो आप। जी जी,
1: मैं माँ की सेवा करती हूँ लेकिन पैसे कभी नहीं लेती।
0: जी जहाँ सेवा भाव होता है वहाँ पैसे की बात होती भी नहीं बहन।
1: वहाँ अगर पैसे ले लेते तो माँ की सेवा सब बेकार हो जाएगी।
0: जी जी, सेवा जो शब्द है वो बहुत ही गहरा है। तो मंजरी जी,
1: मैं बहुत,
0: हाँ बताइए जी,
1: आपका प्रोग्राम भी सुनती हूँ।
0: जी जी, तो हम आपको सुनवा दें आपकी पसंद का गीत। जी कॉल करने के लिए धन्यवाद, इंजॉय कीजिए। हाँ हाँ, मैं जरूर सुनवाती हूँ।

जी हाँ दोस्तों, हम बता दें कि इस कार्यक्रम को तकनीकी रूप से पहुंचाने में हमें सहयोग दिए अश्विनी शुक्ला जी ने, और इसी के साथ कार्यक्रम हेलो अयोध्या का आज का सफर बस यहीं तक।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हेलो अयोध्या। ये आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है 101.9 FM बैंड और प्रसार भारती की न्यूज ऑन AIR ऐप पर। प्रातः के 10 बजे हैं। अब सुनते हैं विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम।
1: हेलो
2: हेलो फरमाइश।

0: हेलो दोस्तों, मौसम ले रहा है अंगड़ाइयां, पूरी हो रही है बरसात में भीगने की ख्वाहिश। विविध भारती के चाहने वालों की तमन्ना भी पूरी होगी, क्योंकि हम लेकर के आ गए हैं आपका पसंदीदा फोन इन प्रोग्राम हेलो फरमाइश। मैं हूं जयंत पात्रिकर और ये है आज का पहला कॉल। हेलो फरमाइश।
1: हाँ सर, नमस्कार।
0: नमस्कार,
1: पवन कुमार सेन बोल रहा हूँ सर, गंडई पंडरिया छत्तीसगढ़ से।
0: बोलिए पवन कुमार जी, कैसे हैं आप?
1: बहुत अच्छे सर, आप लोगों के विविध भारती कार्यक्रम के नियमित श्रोता हूँ मैं, और बहुत अच्छा लगता है सर आप लोगों का जो कार्यक्रम है, आप लोगों का सुमधुर आवाज है, और इसी आवाज से हम दिल लगाए रहते हैं सर।
0: तो पूरा दिन भर आप सुनते हैं विविध भारती?
1: बिल्कुल सर, क्या समय समय में सुनता हूँ सर, मोबाइल के द्वारा काम में भी जाता हूँ, मिस्त्री लाइन के काम करता हूँ मैं।
0: मिस्त्री लाइन के मतलब?
1: तो मकान मिस्त्री का सर।
0: अच्छा अच्छा अच्छा।
1: जी सर, मकान मिस्त्री का ठेकेदारी का काम करता हूँ, और रेडियो तो सर कई वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ सर मैं।
0: जो अपना काम करते हुए आप मोबाइल ऐप पे जो है विविध भारती?
1: जी सर, जी सर।
0: अच्छा अच्छा अच्छा। बोलिए पवन कुमार जी, क्या सुनना चाहते हैं आज?
1: आज एक बहुत ही सुंदर आपके केंद्र से गीत सुनना चाहूंगा सर, मोहम्मद रफी जी की आवाज में, भरोसा फिल्म का गीत सर, ये झुकी झुकी नैना ये लट बल खाती तो दिल क्यों ना मेरा दीवाना हो तेरा वाला गीत।
0: ये किसके लिए गाना सुनना चाहते हैं आप?
1: इसमें सर मेरे खास एक परम मित्र परम दोस्त है पन्नालाल सेन जी, वहाँ तक पहुँचाना चाहता हूँ सर अपना फरमाइश अपने भाई पन्नालाल सेन तक।
0: कहाँ रहते हैं पन्नालाल जी?
1: बाग बहरा भदरसी रहता है सर, छत्तीसगढ़ के अंदर घर आता है, अपने गंडई से कम 200 किलोमीटर आगे है सर उसका घर, और हमारा परम मित्र है सर वो।
0: अच्छा, इनका भी ये गाना पसंदीदा है?
1: बिल्कुल सर, उसी के अनुरूप तो मैं फरमाइश कर रहा हूँ सर आज।
0: जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया फोन करने के लिए पवन कुमार जी। ये रहा आपकी पसंद का भरोसा फिल्म का गीत।

0: हेलो फरमाइश।
1: हाँ मैं राजस्थान जोधपुर से महबूब खान बोल रहा हूँ।
0: बोलिए महबूब खान साहब, कैसे हैं?
1: आज आपकी दुआ है सर, बैंक पार्टनरशिप से बोल रहे हो आप?
0: जी जी जी,
1: आपकी आवाज़ सुनता हूँ आपका, तो बहुत पुराना सोचा हूँ मैं, तो 50 साल का रेडियो स्टेशन सुन रहा हूँ।
0: क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। बताइए कौन कौन से प्रोग्राम सुनते रहे हैं पिछले 50 सालों में?
1: आओ मैं सुनता हूँ ज्यादा, और आपकी फरमाइश, आलो फरमाइश।
0: जी जी,
1: और काफी प्रोग्राम सुनता रहता हूँ।
0: और आपके पसंद के गाने कौन से होते हैं? पुराने गाने ज्यादा पसंद करते हैं आप?
1: पुराने गाने शौकीन हूँ सर, मैं बहुत पुराने गाने के शौकीन हूँ सर। मैं मेरे दोस्तों के नाम ले सकता हूँ?
0: हाँ बिल्कुल,
1: ताज मोहम्मद जी, बरकत खान और अकबर खान, और दिनेश भाई, कृष्ण राम जी, दारू भाई मेघवाल, हमारे दोस्त रेडियो होता है, नियमित होता है ये।
0: जी जी जी जी, तो महबूब भाई इन सारे दोस्तों को भी वही गाना पसंद है जो आप आज बताने वाले हैं?
1: आज ही आज ही है, हमारे बहुत दिल के करीब है ये गाना।
0: कौन सा गाना?
1: तुम्ही मेरी मंदिर, तुम्ही मेरी पूजा, तुम्ही देवता हो,
0: खानदान फिल्म लगे। अच्छा जी
1: जी सर, नूतन फर्मा है।
0: बहुत बहुत शुक्रिया फोन करने के लिए महबूब खान साहब। ये रहा आपके और आपके दोस्तों की पसंद का गीत।